सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ नरखीसर जुग जुग वेदा नाले

ब्रह्मांड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे। से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बिचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाथी कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर देख कीता आपना जो तिस दी वड्याई। जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई। सो पात साहु साहा पत साहिब नानक रहन रजाई। आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड वड्डा डीठा होए। कीमत पाए न कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए।

रहाऊ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाइया, सिद्धा पुरखा किया वड्याइया, तुद बिन सिद्धि के

तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला,

नाम मिलै तृप्ता सह मिल संगत गुण परदास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भाग हीन जम पास जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुरु संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उद्दम जा आहर हर जियो परया शैल पत्थर मह जंतु पाए ताका रिजक आगे कर धरया मेरे माधो जी सत संगत मिले सुतरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ।

अंत न पारावरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपारा, सब त्याव है सब त्याव है तुद जी। हर सच्चे सिरजन हारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्याव हो संतो जी, सब दुख विसारन हारा।

हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनिक अनेक अनंता तेरी अनिक करह हर पूजा जी तप तप है।

निहचल करता सोई, तुदे आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहै सोई, तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा तू।

तुम हो पुरी चतुर्दशकंता, काल पाए ब्रह्मा बापतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूठियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब

सोई गुरु समझे हो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो, काट काट के

जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निरपकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़।

महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा, एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही पूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो वार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहरिहु, ताके ताप तनक मह हरिहु, रिद्ध सिद्ध कर्मु सब होई, दुष्ट छाह छवस कै न कोई,

एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहें हम एक न जानियो श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहू सब तू हे बखान्यो दोहरा सगल

अनहद तूरे, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पार पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजवां थाल।

पुंचै तिसका हुए उदारु। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारु। तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारु। श्लोक महला पंजवां।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।

स्वत निशा प्रवान करना जी। बड़े भाग्य हाँ संध्या के दीवाना च मालक के चरणों में बैठ करके मालक की बाणी का आनंद माणते हाँ, गुरु साहब जी का बोध का आनंद माणते हाँ। हाजरियां लवा रहे हो सतगुरु जी कृपा कर सारिया की हाजरी दर कबूल करन, दरों को नामदान गुरसिखी जीवन मनोकामना भावना सतगुरु जी सारिया की पूरिया करन। सोहना आप जी के सन्मुख आप जी ने गुरमत विचार राही निहाल कर रहे हैं पंथ के महान विद्वान गुणीजन अति सत्कारयोग ज्ञानी सकत्र सिंह जी। इन्हों पासों आप जी अमृतमई बाणी दार श्रवण करो, भुला चुका की खिमा पते साझी करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

अपरखवीक मंदा किसनो आखिय जा सबना साहिब एक सबना साहिब एक है वेख धंध लाए।

सकत गई प्रंकटया शिव ज्योत जगाया जिनके पुतै पुन्न है गुरपुरख मिलाया नानक सहजे मिल है

नानक उन संग मोहे उदारु, सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाउ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै, प्रभ कै सिमरन पौ न

सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन हुए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। से सिमर है जिने आप सिमराए, नानक ता कैला गोपाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा।

रचनामृत माहि समाय। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरै से तनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते। प्रभ को सिमरै से जन परवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान।

को सिमरै सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला। प्रभु को सिमरै से पर उपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी। प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावे। प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभु को सिमरै तिन अनंत कनेरे,

प्रभु कै सिमरन कबू न झूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल भिगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन कांत न पार, सिमरह से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना,

हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत

तन जन कुआ प्रभ दीना हर हर जन कह उठ सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समात नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जात्यो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लता नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग विड भागी पाई है संत के

प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद वसै सुख मंदर तिसे त्या सदा मने अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्या कतवर लुभावे। जे प्रसाद सुख से सोई जय मनाठ पहरता का जस गावी जय। जे प्रसाद तू सबको मानै मुखता को जस रसन बखानै। जे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याहे केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जब दर गै मन पावै नानक पत सेती कर जावै। जे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लाऊ तिस राम सनेही। जे प्रसाद तिरौ रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके। जे प्रसाद तुझको न पहुँचै मन सा सिमरो प्रभु उच्चे। जे प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद आ भूखन पैरी जय मन ते सिमरत क्यों वारस की जय। जे प्रसाद सब हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलुक तना राख पुरोय प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बंत बनाई उठ ते बैठ सत्य सहत आई। तिसहत आई जो एक अलकै इहां उहां नानक तेरी रखै। जे प्रसाद करै पुन बोधान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी की जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पतर है गुरु प्रसाद नानक जस कह। जे प्रसाद सुने करण नाद जे प्रसाद पेख विस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परम गत पावै जे प्रसाद सुख सह समावै सा प्रभु त्याग और कत लागो। गुरु प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रकट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुता कौ जाव। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तुता स्युराज। जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सर्व निदान प्रभु तेरी मया तू कछु न किन्हू लया। जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक किनकै कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साजना की अचर्ज कथा अष्टपदी। साध के संग मुखुजल होत साध संग मल सकली कोत। साध के संग मिटै विमान साध के संग प्रगटै सुज्ञात। साध के संग बुझै प्रभु नीरा साध संग सब होत नबेरा। साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा भरनै कौन प्राणी। नानक साध की शोभा परमा समानी। साध के संग अगोचर मिलै साध के संग सदा प्रफुल्लै। साध के संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग हुए सबकी रेन साध के संग मनोहर बैन। साध के संग न कतु मुतावै साध संग स्थित मन पावै। साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यों नहीं बैरु साध के संग न भीगा पैरु। साध के संग नाही कुमंदा साध संग जानी परमानंदा। साध के संग नाही हों ताप साध के संग तजै सभी आप। आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बनियाई। साध के संग न कब हूं तावै साध के संग सदा सुख पावै। साध संग बस सगु चरल है साधु कै संग अजर सह। साध के संग बसै थानी उच्चै साधु कै संग महल पहुँचै। साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान। साध के संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै।
साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय कर सेवा।

संग न मंत्री विश्वर सा संसार पर निस्तर है। साधक संग लग गया प्रमिठा साधु कै संकट का डीठा साध सुन भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध पेटी संजोग।

साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक बिन कोय, नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल मह कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक, जैसे सूर सर्व कौ शोक, ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह धीरजेक, ब्रह्म ज्ञानी कह धीरजेक, ज्यों बसदा को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यों पावक का सह सुभाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैं न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कह मन हुए प्रगास, जैसे तारु पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक चिन्ह प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए दाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बकाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उरतार है जो अंतर नाम, सर्व में पिख है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक अपर सगल निस्तार है। अष्टपदी मिथ्या ना ही रस ना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श,

क्या पर हरह मन की बास न मन ते तरह इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा वर्ष वैष्णो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न विष्णु की माया ते हुए पिन कर्म करत हो।

वह नेक कर्मों तिस वैष्णव का निर्मल धर्मों का उपल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्रह चय मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल। आप दिडैवर नाम जपावै नानको वैष्णव परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग। मानते बिनसै सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म सासन पापा मल खूवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टैल करै नित नीत मन तने अर्पै बिशन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नामत मैं सोदै राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै बदे जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो नयावै, वेद प्राण सिमरत बूझै मूल सूखम मैं जाने स्थूल। चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए सास पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उतार है पास प्रेत मुगत पात्र को तारै, सर्व रोग का उखद नाम कल्याण रू मंगल गुणगाम, काहु जुगत कितै न पाई धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास हो तिसका नाम सतराम दास हो, आत्म राम तिसनदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान सो दास धर गै परवान, अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे, सकल संगातम उदास ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभ की आज्ञा तुम्हें तावै जीवन मुख सो कहावै, तैसा हर तैसा सुख सदा अनंत नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा मृत तैसी बिकाटी, तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान, जो वरता ईसाई जुगत नानको पुर कहिए जीवन मुक्त, पार नम के सगली ठाओ जित जित कर रख है तैसा तिन्नाओ, आपे करन करावन जोग प्रभावै सोई फुन हो, पसुरया बंत तरंग लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता बिना, सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भये निहाल सलो, उस्तत करे अनेक जन अंत न पार अवार, नानक रचना प्रभ रची पौ विदनिक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन भ्रमै उदासी, कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तपीश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कबका विचार है, कई कोट नवतन नाम त्यावै नानक करते कंत न पावै, कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिगात्म निकोर, कई कोट पर दर्व को ही रह कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रमाहे कई कोट पर देश प्रमाहे, जित जित लाओ तित तित लगना नानक करते की जाने, करता रचना कई कोट से जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्व पाए, कई कोट पात्र वृख निप जाए, कई कोट पवन पानी वैसंतर कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नखेत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सुतार है नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमृत शास्त्र, कई कोट कीर्तन समुद्र कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिरजीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जग किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रे शुक्र मिर्गा सब ते निरह सबूते दूर, नानका फलिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर निवासी, कई कोट जन्मै जी वह मरै कई कोट भोजुनी फिर है, कई कोट बैठत ही काहे कई कोट काल तक पाहे, कई कोट कीर्तनवंत कई कोट माया में चिंत, जय जय भाणा तह तह राखे नानक सब किछ प्रभ कै हाथे, कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिवलागी, कई कोट प्रभ को खोजंते आत्मै पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास जिनको मिल्यो प्रभ विनाश, कई कोट मांगै सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको आपसु प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हुए अवतार कई जूत किन्नो विस्तार,
कई बार पसरे उपासार सदा सदा के कंकार कई कोट कीने बहुपात प्रपति हुए प्रमाय समाता कंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तीन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहार है को नेत्रे कई कोट नाम रस पी वह अमर भय सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे अपने जन को सत सत समारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभे कह दूसर ना ही कोई नानक तिस बलिहार ने जल तलमही अल सोय अष्टपदी करण करावन करण जोग ज्योत पावे सोई होग किन मैं तापु तापन हारा अंत ने किस पारा भारा हुक्मे धार धार रहावे हुक्मे उपजै हुक्म समावे हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कार कर देखे अपनी वडियाई नानक समय रहा समाई प्रभावै मानु गत पावै प्रभावै तां पत्थर तरावै प्रभावै बिन शास्त्री राखै प्रभावै तां हर गुण भाखै प्रभावै तां पथ तुधारै आप करै अपन विचारै दोहां सिरियां काप स्वामी खेलै बिकसै अंतर जामी जो पावै सुकार करावै नानक दृष्टि अवर नाय आवै कहो मानुक ते क्या हुए आवै जो तिस पावै सोई करावै इसके हाथ हुए तन सब किचले जुत पावे सोई करे अन जानत विख्या मैं रचे जे जानता अपना बचे पर में भूला दे दिष्टा वै निम कमाए चार कुंट फिरे आवे कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन्ना मिले खिन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवा जा का दिष्ट कछु नाया वै तिस तत्काल दा दिस प्रगटावे जा को अपनी करे बख्शीश ता का लिखा न गने जगदीश जियो पिंड सब तिस की रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीव देख बढ़ाई इसका बना ही सहात कर्ण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस पावे सोई पुन थियो कबहू ऊंच नीच मह बसै कबू सोग हर करंग हसै कबू निंद छिंद व्यवहार कबू बकाश पयाल कबू बीता ब्रह्म विचार नानका मिलावनहार कबू नृत्य करै बहुपास कबू सोए रहे दिन रात कबू मां क्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू होए वह बड़ राजा कबू पेकारी नीच का साजा कबू अपकीर्त में आवै कबू भला भला कहावै ज्यों प्रवरा कहते भी रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कबहू हुए पंडित करे बख्यान कबहू मोहन धारी लावे ध्यान कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग हुए जिया निक जोन भरमै भरमिया नाना रूप ज्यो स्वागी दिखावे ज्यो प्रभावै तिवै निचावै ज्यो तिस पावै सोई हुए नानक दूजा अवर न कोए कबहू सात संगत उपावै उस स्थान ते बहुर न आवै अंतर हुए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रति करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मह जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान श्लोक सुखी बसै मुस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गलेष्ट बदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती हुवत स्वान जो जाने मैं जुबन वंत सो हुवत बिष्टा का जंत आपस कौ करवंत कहावै जिन मरै भोजन प्रमावै धन भूम का जो करै गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानकी हां मुक्ता गै सुख पावै धनवंता होए कर घर भावै तिन समान कर संग न जावै बौलस कर मानुख ऊपर करे आसु पल पीतरता का हुए विनाशु सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जाए पसमंत किसे न बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान सो जन नानक दर गै परवान कोट कर्म करे अवतारी श्रम पावे सगले बिरथारी अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार अनेक जतन करा तुमने द्रवै हर दर गै कहो कैसे गवै आपस कहो जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व किरण जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ हुए तब इसको सुख नाही कोए जब जाने मैं किच करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत
तब लग निश्चर नाही चीत, जब लग मोह मगन संगमाए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटै, गुरु प्रसाद नानक हो छूटै, सहस कटे लग कोट तावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै, अनिक भोग भिख्या के करै, नै तृप्तावै खप खप मरै, बिना संतोख नहीं कूरा जै, सुपन मनोरथ वृत्ति सब का जय, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसै प्राप्त होए, करण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करण करावन करने हार, इसके हाथ कहा विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा हुए, आपे आप आप रव सोए, जो किछ कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबू कै संग, बुझै देखे करे विवेक, आपहे कापहे अनेक, मरे न बिन से आवे न जाए, नानक सद ही रहा सुमाए, आप उपदेशै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप किनो अपन विस्तार, सब कछु उसको करने हार, उसते पिन कहो किछ होए, थान तनंतर कै सोए, अपने चलताप करने हार, कौत करे रंग आपार, मन मया मन अपने माहि, नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किन्ने विख्यानी, सच सच सच सब कीना, कूट मदे किन्ने बिरले चीना, भला भला भला तेरा रूप, व सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी श्रवण बखियाणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, श्लोक संत शरण जो जन परै, सो जन उदरन हार, संत के निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार, अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै, संत कै दुखन जमते नी चुटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए, संत कै दुखन मत होई मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हथे को रखै न कोई, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक पीतरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प ज्यों पाए, संत कै दुखन त्रिगद ज्यों किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मै चलै, संत कै दुखन सब को छलै, संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए, संत दुखी का था को नाहि, नानक संत पावै ता ओए पीगत पाए, संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक टिक न पाई, संत का निंदक मा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत के निंदा दुख में दुख, नानक संत पावै ता उसका पी हुए मोग, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित, संत के दुखी को डान लाग गए, संत के दुखी को सब त्याग गए, संत का दुखी माँ अहंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे तन लय मिलाए, संत का दुखी अद बीज ते टूटै, संत का दुखी कितै काज न पहुँचै, संत के दुखी को ध्यान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाहि, अपन बीज आपे ही खाए, संत के दुखी गवर न रखन हार, नानक संत पावै तन लय उबहार, संत का दुखियों बिल लाए, ज्यों जल विहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक इंधन नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै केला, ज्यों बुआड़ तिलके तुमाहि दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदमिथिया कहत, कित निंदक का तुर ही पाया, नानक ज्योतिष पावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिलै सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरै न जीवाई है, संत के दुखी की पूजै न आसा, संत का दुखी उठ चलै निराशा, संत का दुख न तुष्टै कोई, जैसा पावै तैसा कोई होए, भया कीर्तना मिटै कोई, नानक जान सच्चा सोई, सब कट दिस क्यों करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की स्तुति करो दिन रात, इसे त्याहु सास की राह, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथी, अपना के लाभ करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनु कृपा करै तिस अपन नाम दे बड़ भागी, नानक जन से श्लोक, तजो स्यानप सुरजन हो, सिमरहो हर हर राय,
एक आस हर मन रखहु, नानक दुख भरम पौ जाय। अष्टपदी मानुक की टेक वृथि सब जान, देवन को एकै भगवान। जिसकै दिए रह अघाय, बौर न तृष्ण लग आए। मारे रखे को आप, मानुकै किछ नाहीं हाथ। तिसका हुक्म सुख होए, तिसका नाम रखंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन लागे कोए। उस्तुद मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रस अमृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, सास संग बिन सह सब संग। चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपिया हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, दरगह नानक उजल मत्था। बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदार के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गणी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाने, इत उत कियो सो जी जाने। नाम संग जिसका मन माने, नानक तिने निरंजन जाने। गुर प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै। सा संग हर हर जस कहत, सर्व लोक त्योहार जन रहत। आन दिन कीर्तन केवल बखियान, गृहस्थ में सोई निर्वाण। एक ऊपर जी जन की आसा, किसकी कटिया जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नान तिसै न लागे दुख। जिसको हर प्रमंच ते आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किस ते डरे। जैसा साते सा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तब सबूजिया। जब देखो तब सब किस मूल, नानक सो सूखम सोई स्थूल। न किच जन्मै न किच मरै, आपन चलताप ही करै। आवन जावन दृष्टन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट। आपे आप सगल मै आप, अनेक जुगत रचताप उथाप। अविनाशी नाही किच खंड, धारण धारे हो ब्रह्मंड। अलख अभे पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सोभावंत, सगल संसार उदरै तिनवंत। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण। आपे मेल लय कृपाल, गुरु का शब्द जप पय निहाल। उनकी सेवा सोई लागे, जिसनो कृपा करह बिट पागे। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरकोत्तम करमान। सो जो किच करै सुप्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग। सह सुभाय हुवै सो होई, करनै हर पछानै सोई। प्रभ का किया जन बीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। प्रभ का किया जन बीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिसते उपजे तिसमाय समाय, ओए सुख निदान उन्हों बनयाय। आपस को आप दिनो मान, नानक प्रभ जन एको जान। श्लोक सर्व कला भरपूर, प्रभिरथा जन अनहार। जाके सिमरन उदरी है, नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गाढ़न हार गोपाल, सर्व जी आया पे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिसते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप। अपन किया कछु न होए, जिसो प्राणी लोचै कोए। तिस भिन नाही तेरे किछ काम, गत नानक जपे कर नाम। रूपवंत होए नाही मोह है, प्रभ की जो सगल कट सो है। धनवंता होए क्या को गर्वै, जा सब किश तिसका दिया दरबै। अत सूरा जे को कहावै, प्रभ की कला बिना कहता है। जी को हुए बह दातार, तिस दिन हार जाने गावार। जिस गुर पर सा टूटे हो रोग, नानक सोजन सदा अरोग। जो मंदर को थमे थमन, त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन। ज्यों पाखान आव चढ़ तरै, प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरै। जो

अष्टपदी संत जना मिल करु विचार एक सिमर नाम आधार अवरूपा समीत विसारु चरण कमल रिद मह उतारु करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवत एह तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आसरा खुमन बाही सर्व रोग नानक मिट जाहि जिस तन को चार कुंट उठतावै सो तन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित बाचे मीत सो सुख साधु संग परी जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी

मन प्रभु दुहर कहनाए। दाद स्थाव त्या बैठाए ताको बिघन लागे कोए जा कर दे बसै हर सोए। कल ताती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सह पूर्ण होए आस भगत पाया तुम प्रगास। तित कर जाए बसै अविनाशी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कह जन साचा। जन्म मरै सु काचु काचा आवा गमन मिटै प्रभु सेव आप त्याग शरण गुरुदेव रतन जन्म का हुए उधार। हर हर सिमर प्राण आधार अनेक पावना छुटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे। हर की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संग न चाल स्थिर है तना तू क्या लपटाव है मूर्ख मना। सुत मीत कुटाम्बर बनता इनते कहो तुम कवन सनाता राज रंग माया विस्तार। इनते कहो कवन छुटकार असहस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारी। जिन दिए तिस बुझै ना बेगाना ना बिसार नानक पछताना। गुर की मातू लेने भगत बिना बह डूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखो मन बाहि जन्म जन्म के किल विख जाहि। आप जप हो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो। सार भूत सत हर को नाओ सह सुभाए नानु गुण गाओ गुण गाओ तेरी उतरस मैल बिन सजाए हो मैं बिख पैल। होए अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रह सरनाम संभाल। छाड़ सियान सगली मना सासंग पावे सच तना। हर पूंजी संच करो व्यवहार यहाँ सुख दर गय जयकार। सर निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख। एको जप एको सालाहे एक सिमर एको मन आहे। एक के गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत। एको एक एक हरिया पूर्ण पूरे प्रव्याप। अनेक विस्तार एक दे भय एक राज पराछत गए। मन तन अंतर एक प्रवराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए अष्टपदी। जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर। पार ब्रह्म मेरे श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावू सास सास प्रभ तुम्हें त्यावू। चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करूं प्रभ की नित नीत। एक ओटे को आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुपार परे प्रेम रस रंग उपजय चाव साध कै संग। परे शरणान सब त्याग अंतर प्रगास अंदिन लिवलाग। बिड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रत्ते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होयो दयालु सेवक की नु सदा निहालु। बंधन काट मुख जन पया जन मरण दुख भ्रम गया। चुपनी श्रद्धा स पूरी रव रया सत्संग हजूरी। जिसका सातिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल न पाने सो क्यों बिसरै जे किया जाने। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अग्न में राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिकते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै। गुर पूरै तति है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो कामान त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाओ। आप जपो वरै नाम जपाओ भगत पाए तरियै संसार। बिन भगति तन हो सी चार सर्व कल्याण सुख निद नाम। बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होत नास। नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ। मन तन अंतर ही सुआओ नित्र उपेक दर सुख होए। मन बिकसै सात चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग। बिरला को पावै संग एक बस दीजै कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल। आद पुर कारण करतार भगत जना कई प्राण आधार। जो जो जपै सो हुए पुनीत भगत भाई लावै मनहीत। हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी चरण पुरख भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मुख पाए एक निमक हर के गुण गाय। अनक राज भोग बडे आई हर के नाम की कथा मन पाई।
वो भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सा संग प्रभ देहु निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सारगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानकाया पे ही फिर जाप अष्टपति जब कार्यु कछ न दृष्टि तापा पुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब वैर विरोध के संक मात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरक शोक हो किसे व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म तम ओ का सोवत परम अपन केला वर्ती जानन करने हर न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कौ किस कौ गनी जब कह रगम पार तब नरक सुर कौ कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाई तब शिव शक्त कहो कित ठाई जब आप है आप अपनी ज्योत रह तब कवन निडर कवन कत डरे अपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपन या सुन तह जन्म मरण कहो कहा बिना सुन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अभिगत गुचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गुचर गादे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे अपन आप पिय चर जा नानक अपन रूप पियो पर जा जह निर्मल पुरख पुरख पर

जय स्वरूप केवल जगदीश, तय चल छिद्र लगत कहो कीस, जय ज्योत स्वरूपी जो संग समावै, तय किसै भू कवन तृप्तावै, करन करावन करने हार, नानक करते का नाही सुमार, जब अपनी शोभा पण संग बनाई, तब कवन माए बा मित्र सुत भाई, जय सर्व कलाया पै परवीन, तै बेद कतेव कहा को चीन, जब अपन आपा पुर धारै, तो सगन अपसगन कहा विचारै, जे अपन ऊचापन अपनेरा, तै कौन ठाकुर कौन कही है चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जन हो आप, जय अचल छेद भेद समाया, मुहा किसै व्यापत माया, आपस को पया देश, त्यो गुण का नाही प्रवेश, जय कहे एक एक भगवंता, तै कौन अचिंत किस लागै चिंता, जय अपन आपा पतियारा, तै कौन कथै कौन सुन नहारा, बहु बेअंत ऊच ते ऊचा, नानक आपस को पह पहुँचा, जे आप रचियो प्रपंचकार, त्यो गुण मैं किन्नु विस्तार, पाप पुन तै पई कहावत, को नरक को सुर्ग बंछावत, आल जाल माया जंजाल, हों मैं बहु परम पै पार, दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार की उपज्ञान, अपन खेल आप कर देखै, खेल संकुच है तो नानक कह, जय अभिगत भगत है आप, जय पसरै पासारु संत प्रताप, दुहु पाकाया पे तनी, उनकी शोभा उनहु बनी, आपै कौत करै आनंद चोज, आपै रस भोगन निर्जोग, जिस पावै तिस अपन ना इलावै, जिस पावै तिस खेल खिलावै।

कह दृष्टारु अष्टपदी आप कथे आप सुनने हारु अपै का विस्तारु जात पावे सृष्ट उपाय अपने भाणे लई सुमाय तुम ते भिन्न नहीं किज होए अपन सूत सब जगत परोए जाकू प्रभ जीवा बुझाई सच नाम सुई जन पाई सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सृष्ट का जीता जी जंत्र सबता कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राख तिसको न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर कहा को जाई सब सिरेक निरंजन राय जी की जुगत जा कह सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत पार नानक दा सदा बलिहार पूर्ण पूरे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने करतब जाने आप अंतर जामी रहो बया प्रतपाल जीन भवपात जो जो रचियो सो तिसै त्यात जिस भावे तिसले मिलाए भगत करह हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक के जानिया जन लागा हर एक कहनाई तिसकी आस न बिरथी जाए सेवक को सेवा बन आई हुक्म बूझ परम पद पाई स्त्य ऊपर नहीं विचार जा का मन बसिया निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर अंधिन पूजै गुर के पैर हे लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रव्या पह मेले साथ संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रपरमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचन के गुण गाओ प्राण तरण का यह सुहाओ आठ पहर प्रपिक हुनेरा मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा सुन पदे सिरदय बसावो मन चे नानक फल पावो हलत पलत दोए लिहो सुवा राम नाम अंतर उतार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसे ते साज परिखिया मंत्र नाम जपो लिव लाई दुख दर्द मन ते पहु जाए सच व्यापार करो व्यापारी दर गैनी बह के तुम्हारी एका टेक रखो मन वाहे नानक बहुर नया वह जाहे तिस्ते दूर कहा को जाए उबर रख नहार त्याए निर्भव जपै सगल भव मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोय न पहुचन हार श्री उपर ठाडा गुर सूरा नानक ताके कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत सृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सोत निहाल ताके निकट नयावत काल अमर भय अमरा पद पाया सास नानक हर त्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुरदिया ज्ञान अंधेर विनाशु हर कृपा ते संत पेठिया नानक मन प्रगासु अष्टपदी संत संगंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक स्कट माई अनिक रंग नाना दृष्टा हे नाउ निधि अमृत प्रभ का नाम देही महेश का विश्राम सुन समाद अनहत है नाद कहन न जाई चर्ज विषमा तिन देख्या सब दिखाई नानक तेजन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहा भगवंत तरन माही आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंतिन पर्व तह पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माही चार कुंट दह दिशे सुमाही तिस्ते पे नहीं कोठाओ गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ वेज प्राण सिमृत में देख सस्यर सुन क्षेत्र में एक वाणी प्रभ की सबको बोले आप डोल न कब हूं डोले सर्व कला कर खेल है खेल भूल न पाई है गुण अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत धार्यू स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद परम का नास नानक तिन में एहो विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुने सुबचन सर्व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिस किए रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो हुई सोई सुख मानै करण करावन हार प्रभ जानै अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एक अंकार
अनिक कला लखी न जाए, जिस भावे तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कही है दूर, आपे आपा भरपूर अंतर गज साप जनाए। नानक तिस जन आप बुझाए, सर्व भूता वरतारा सर्व नैना भिख नहारा। सगल समग्री जाका तना, आपन जा साप ही सुना। आवन जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया। सब कह मद अलिप तो रह, जो किछ कहना सो आपे कह। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे तां लै समाए। इस्ते हुए सुना ही बुरा उरे, कहो किने कछ करा आप ला। कर तू तत्नी की आपे जाने, अपने जी की आप साज धारी। सब साच उत पुत अपन संग्राज, ताकि गत मित कही ना जाए। दूसर हुए ता सोची पाए, किसका किया सब परवान। गुर प्रसाद नानक हो जान, जो जाने तिसदा सुख हुए। आप मिलाए ले प्रभु हुए, हो धनवंत कुलवंत पतवंत। जीवन मुख जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया।

भजन को सदा नमस्कार सुलोक पूरा प्रभु आराध्या पूरा जाका नाऊ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस नित्या को तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सास गगन सागर तरह हर तन के परलेहु भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उदारो जीव गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल रतन सुनत कमावत हो तो उदार आप तरह लुक कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्दना हतवा जय सुन सुन अनंद करे प्रभुगा जय प्रगटे गोपाल महांत कह माथे नानक उतरे तिन कह साथे शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए पैर भय सब रेन।

ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप योग प्रत्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगा सब कहमत सगल के उदास सुंदर चतुर तत्व का बेता समदर्शी एक दृष्टिता इह फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम वचन मन सुने एहो ने

प्रभु नाम, भगत जिन्ना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: अजूनी सहपं गुरप्रसाद जाप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचा सोच न हो वई जे सोची लख वार
1: चुप चुप न हो वई जे लाए रहा लिवतार
0: भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार
1: सहस अण पां लख होहे ता एक न चले नाल
0: केव सचियारा होइया केव कूड़ा टुटै पाल
1: हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल
0: हुक्मे होवन आकार हुक्म न कहया जाई
1: हुक्मे होवन जी हुक्म हुक्म मिले वडे आई
0: हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईया
1: एक ना हुक्मे बख्शीस एक हुक्मे सदा पवाईया है
0: हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए
1: नानक हुक्म है।

0: जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार
1: भरिए हाथ पैर तन देह पानी धोतै उतर सुखे
0: मूत पलेती कपड़ होए देसा बोण लैया ओ धोए
1: भरिए मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग
0: उन्नी पापी आखण नाह कर।

0: एहो अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए।
1: वड्डा साहेब उच्चा थाओ, उच्चे ऊपर उच्चा नाओ।
0: ए वड ऊंचा होवे कोए, तस

0: सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई
1: हैपी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई
0: रंगे रंगे पाते कर कर जन से माया जन उपाई
1: कर कर वेखै पीता अपना जिव तिस दी वडियाई
0: जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई
1: सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई
0: मुद्दा संतोख सरम पद झोली ध्यान की कर है बपूत
1: था काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत
0: आई पांथी सगल जमाती मन जीता जाग जीत
1: आदेश तसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश
0: भुगत ज्ञान दया भंडारण घट कट।

0: जात बाहारा धीरज सुमियार आहरण मत भेद हथियार
1: पाओ खला अगन तप ताओ भांडा पाओ अमृत तित टाल
0: घड़िया शब्द।

0: राज हजारे।
1: भूत भविख भवान के भूपत कौन गनय नहीं जात बिचारे।
0: सरिपद सरि भगवान भजे बैनो अंत कौ अंत कहता।

0: हमारे कारियन
1: जौन जन सतर हमारे मारिया
0: दे मुझे अबरिय
1: मन काल का त्रास बरिया
0: जो सदा हमारे पश्चा
1: दरिया तो जो करी हर अच्छा
0: मोहे रखन हारी।

0: हमारा
1: काल सब जगत बनायो
0: देव दाद जशन बजायो
1: अंत एक बतारा
0: सोई गुरु समझ हो हमारा
1: कार्य से ही को हमारी
0: सकल प्रजाजन

0: जानत
1: वहां मोड़ काज भेद न जानत
0: जीव को कहत सदा शिव
1: निरंकार का जीनत न भैव
0: अपनी बुद्ध है जेती
1: बनत भैन भैन तो है देती
0: लखाना जाए पसारा
1: कह बद सजा प्रथम संसारा
0: कह रूप अनूप स्वरूप
1: रंग भयो राव कहे भूपा उद भोज खान बहुत रज दीनी
0: राजा है बैठा
1: कहूं सिमट पहो

0: दुष्ट दोख ते लेहो बचाई
1: हम पर जग माता
0: ग्रंथ करा पूर्ण सोबराता
1: सकल दी को हरता
0: दुष्ट दोख यन कोशा करता
1: तुझो पै दियाला
0: पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला
1: भाषक पल पावे सोई
0: दोख न साब आबद कोई अड़ल
1: गंग जाय सरसना पावे
0: सुने मूढ़ जत लाए चतुरताया भई
1: दर्द पौ नित न तिन नरके रहे
0: हो जो या की एक बार चौपाई को कहा चौपाई
1: सतर सैंस
0: अर्ध सात फोन तीन कह जा
1: सुधी अश्मीर।

0: सत्य सप्ताम सत्य सब्जो सची तेरे सत्य सत्य चाला सची तेरे कुदर सत्य पासा नानक सच ध्यान सच जो मृत मैं सो कच न कच महला पहला
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा नाव वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जाने चल थाओ वड्डी वड्याई जाने अलाव वड्डी वड्याई पूज सभाओ वड्डी वड्याई जा पुत्र जात वड्डी वड्याई जा प्यार नान कर रखत जाय कीता करना सब जाय माता पूजा
2: ए जग सती की है कोठड़ी सती का विच वास इतना हुक्म।

0: सत्संग जी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी साहेबा शिव गौरी पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय तिरंकट कुरते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया कानून दावत आए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाही के पितर आत्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठदार ध्यान करके गल तथ बोलो जी वाहे गुरु गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटिया जपिया जपिया जिन्हें नाम जपिया वंड छकिया दे चलाई ते वाहे देख निट कीता तेना प्यारे सत्यारा दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु जिन्ना सिंघा सिंघणिया धर्म हे सी दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लवाईया जरखड़िया से चढ़े आर नचराए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं आ रहा सिखी से देखे संस्था सिंह निभाया तिना जी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु पतगुरु का ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चेताव है चित आवन का सदका सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब चंद देख देख की फतेह बृद की पहच पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बुरबाले बोलो जी वाहेगुरु सिखा सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु सिखा दा मन नीमा मत रुचि मत पत के रखे आप वाहे गुरु गुरु की बनवाज पंथ सदार सहाय दतार जियो गुरुद्वारा ननकाणा साहेब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जी पंथ को छोड़िया गया दर्शनदार से सेवा संभाल ददा अपने खालसा जी बख्शो ये नोटिया की ओट गुरु न्यासरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु दतार जियो दोए कर जोड़ करो अरदास तुझ भावे ताने रास ये की बनवाज जी आपके चरण कमल दरदास जी दतार जी आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश मान संत दर्शन दादे के निहाल दतार जी निहाल निहाल किया बेअंत बाणिया के पास ऐसे वे राजेश सिंह ने आपके चरण पुत्र की बाणी आशा की वाद संपूर्ण कीर्तन किए छे पौड़िया आनंद साहब ने कीर्तन उतार कृपा करो होइया भुला चुका माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदन चांड कृपालता करो जी अगो तो शोध से पितर बाणी चांद बल बुद्धि बख्शिश करो कि इस पीछे चाबीदार कर सरदार सरदार शरणजीत सिंह बीबी जसबीर कौर सरदार जसविंदर सिंह बीबी मनिंदर कौर सारे परिवार वालों सरदार पिता जी हो अपने बच्चियां बेटी नैना सिंह बेटा सिराज सिंह जी ग्रैजुएट होने की खुशी में बेटी जीना सिंह की पढ़ाई की सफलता वास्ते बेनती करते सरदार जी परिवार अज ऐसे हफ्ता वाली कीर्तन दरबार की लंगर की तन मन धन सेवा कर दरदार बख्शिश करो जीवनवास जी इन्होंने खुशियां में आप दख्शिया दादा बच्चों परिवार वालों पुत्र कड़ा प्रसाद देगा तैयार करे हाथ दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सत्संग जी रसना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पुत्र नाम जपे बख्शिश करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखों का प्रकाश करो देश जे परदेश रखा बख्शिश करो जी दतार बख्शिश करो आप जी बख्शिया दाता परिवार वालों $2500 आपके चरण भेटा के प्रवान दतार कमाइया सबण करो कार्य वाधे बख्शो गिरवाज अपनी सेवक की सेवा प्रवान करो गिरवाज बख्शिश कर रहे बच्ची नैनक सिंह बेटा सराज सिंह बेटी जीना सिंह ने बच्चों दतार तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो गुरसिखी नाम दाल बख्शो दतार बच्चे सोने जाबन दाल बख्शो गिरवाज बेटी नीना सिंह पढ़ाई में कामयाबी बख्शो और उच्ची विजय दाल बख्शो गरीब नवाज कृपा करो बच्चों सिर से मेहर पास रखना चाना न जोड़ना गुरबाणी का प्यार गुरसिखी नाम दाल कृपालता करो जी दाजवाल रखो परिवार में सदा तंदुरुस्ती सुख चाहनी चढ़ गल करनी परिवार ने सदा शुभकामना वास्तव माता पूरिया करनिया सदा अपने चरण सेवा की दाल बख्शी करने कृपालता करो मेहर करो अमृत वेले तो लैके दरती आई साफ संगत आशीर्दार प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगत दरते तिर फुट पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गुरु जी महाराज कृपा करो आपके चरणा सेवा कर रहे सारे ट्याजी संघा सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो ट्याडी कला बख्शो और सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना कृपालता करो गरीब नवाज खालसा पंथ सिंह कौन एकता स्वास्थ प्यार की बख्शिश करके सत दो दाल बख्शो चरण जोड़ो कि बनता प्यार कृपालता करो गरीब नवाज दूर दराज कर बैठी लाइफ सत्ता की श्रमण कर रही सारी सिंह हाल जी ਮਾਂ ਟੋਕਣੀਆਂ ਲਿਖ ਲਾ ਤਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਹਤ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪੇਟਾ ਕਾਰੀ ਚਾਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸੌਲ ਕਰੋੜ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ ਬਖਸ਼ੇ ਦਾਰ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਜੀ ਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਓ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਸੰਬੰਧ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਆਪ ਸੁੱਖ ਰੱਖੋ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਪਾਠ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਾਇਮ ਮਾਹੀ ਬਖਸ਼ੋ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਲਾਮੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰ ਬਣ ਅੱਜ ਦੇ ਆਸਵਾਦ ਦੇ ਹਫਤਾਰੀ ਕਥਾ ਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ ਹਮਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਰਵਾਜ ਬਣਾਓ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਸਿਆਲਾ ਦੀ ਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।

आई तन हमारा मीत रहा, मन बलास पाए साहिब के अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई। परम सन्मान योग धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन गोदी अंदर हाजरी भर रही गुरु सवारी सतसंग जीओ, करो रसना पवित्र आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह जी तुठे हन, रहमत वरती है, शहनशाह जी ने सानू उद्दम बख्शिया है, समत बख्शी है, प्रेरणा कीती है, उद्दम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यों प्रेरे त्यों करना मेरे मालिक ने, रहमत करके उद्दम बख्श के कुछ पल गुरु की गोदी अंदर सभायमान होन दा सुभाग बख्शिश कीता है, जिथे अमृतमय बाणी दा शब्द कीर्तन गायन कीता जा रहा सी। गुरु के बहुत ही सन्मान योग भाई साहब भाई हरभजन सिंह जी, भाई रिशपाल सिंह जी आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन सरवण करवा रहे सन। उपरंत रोजाना की तरह शहनशाह वालों अमृत वेले जो सिख संगतां दे नाम हुक्मनामा बख्शिश कीता है, उदी विचार चंद मिनटां तक आपां करन दा यतन करांगे। गुरु नानक दा मिशन सरबत दे भले दा मिशन है, गुरमुख गाडी राह चलाया है, गुरु नानक देव महाराज जी ने रहमत वरताई है, एक सुखान मार्ग सुखाला मार्ग निर्मल पंथ, ऐसा धर्म सानू सिखाउणा कीता, ऐसा धर्म नू सुखाला कीता है कि संसार की किरत फिरत करद्या होया, परिवार विच रहिंद्या होया, उस निरंकार नाल सांझ बना करके ते अपने जीवन के मनोरथ नू लक्ष्य नू पूरियां करने। गुरु पातशाह तुठे ने सानू उस महान मार्ग दे पंथी बनाया है। सतगुरु सच्चे पातशाह रहमत कीती मनुखता बिसुर होई पई सी, राजे पाप कमाउंदे सन, धर्म दे नाम ते खै मारदे ब्राह्मण मौलाने, मनुख नूं वंडिया गया सी धर्म दे नाम ते, आपसी झगड़े पैदा होए सन। अजिहे हालात विच मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने एक सुर होए व्यक्ति भाई मर्दाना जी नूं नाल लिया है, तां कि मनुखता नूं सुरज कीता जा सके। ख्याल करिया जे जिहड़ा आप सुर विच होवे ना, उहदा यतन हुंदा समुची दुनिया सुर विच हो जाए। जिहड़ा आप टुटा हुंदा है, उहदा यतन हुंदा सारे टुट जाण। बड़ी प्यारी गाथा चलदी है। एक दिन
तान सेन बहुत वड्डा संगीतकार होया, संगीत दी दुनिया दे विच बड़ा नाम है। ते ओदे मन दी मौज कहन लगा अपने चेले नूं, अपने सेवक नूं, भई मैं ना हुण तीन दिन राग दा आनंद मानना है। एक सुर हो करके राग दा आनंद लेना है, निरंकार नाल भेद होना है। मैनू तीन दिन कोई मिलने वास्ते ना आवे, जे आया तो रोक लेना, मैं उन्हूं मिलांगा नहीं। खैर वो अपनी कुटिया में चला गया है, अपना साज कढ़िया ते उस साज राही निरंकार नाल भेद हो करके राग का आनंद मानन लगा। बहुत सुर लगी हुई, जुड़ी हुई, क्योंकि संगीत भी एक बड़ा प्यारा साधन है निरंकार नाल सांझ पाउण दा। साडा जिहड़ा आगाज ही रबाब विचों होया है। सिख लफ्ज़ नूं, सिख धर्म नूं, सिख हिस्ट्री नूं, सारियां नूं गुरु पीठ दी जे ब्रैकटां विच करना होवे तां एक पासे रबाब है ते दूजे पासे नगारा है। अरवाब तो नगारे तक का सफर गुरमत है। सुर होना, सुर करना, नगारे की चोट नाल भुखे दंगे नूं आवाज देनी, राज भाग की स्थापना, एक गुरमत विचारधारा है। खैर इन्हें अजे कुछ पल, कुछ समा ही एकाग्रता विच जुड़िया सी। एक सुर होया राग दे नाल, ते बड़ी दूर तो चल के एक सेवक जिहड़ा ओ उस्ताद नूं मिलन लई आया है। ते उस्ताद नूं मिलन वाला उन्हूं उस चेले ने उकता जिहनूं बाहर खड़िया कीता भई मैनूं डिस्टर्ब ना करे। उन्हें उस्ताद जी का सुनेहा दिता, भाई इवें इवें गुरु जी हुण तीन दिन नहीं मिलणगे, ते उहदे लई औखा हो गया जिहड़ा बड़ा काली नाल आउंदा। असीं वी गुरुद्वारे काली नाल ही आउंदे हां ना, ते कहिण लगा हुण ते बड़ा औखा हो जाएगा, मिले बिना जाया वी बड़ा औखा, आया वी बड़ी दूरों है। जिथे उहनूं रोकिया ना उत्थे उह बहि गया। बह के ते अपने झोले विच्चों जिहड़ा साज लेके गया उन्हूं कढ़िया, उत्थे उन्हें साज वजाउणा शुरू करता जिथे बिठाता उन्हूं। कुछ वैसे मेरे वर्गा बसुरा होएगा, कुछ जान बुझ के बसुरी आवाज अलापी जोर दी जिन्ना कुछ को तान से, क्योंकि तान तो बिना गया वह नहीं जा सकता। गावे को तान हो गया, किसे तान वाली बात। हुण ये बसुरी आवाज तान सैन दे कन्नी पई, जिहड़ा एक सुर होया पिया राग नाल उहदा सुर भंग होया, उहदा आनंद भंग होया, उहदा रस खत्म होया। जकदम अपनी उस कुटिया विच्चों साज नूं छड के बाहर आ गया, उत्थे जिथों बसुरी आवाज आ रही सी, उस्ताद नूं वेख के हाथ जुड़ गए, चरणां ते ढेरी। ते उस्ताद ने कहा, तू बसुरा क्यों गा रहा है? कहन लगा, उस्ताद जी बस तुहानूं मिलण दा बहाना, मैनूं माण सी। इस सेवक ने कहा भी तीन दिन नहीं मिल सकते, पर मैनूं माण सी कि जदों मैं बसरा होवांगा ना तो मेरा उस्ताद मैनू सुर विच कर ली, आप बाहर मेरे को आएगा। सुर वाले नूं बसुरे लोग चंगे नहीं लगते, इसलिए गुरु नानक देव महाराज जी ने सुर विच कीते हुए भाई मरदाना जी नूं नाल लै करके इस धर्म का आगाज किया जिस विच असीं प्रफुल्लित हो रहे। जिथे गए संगीत नाल, रबाब नाल,

इतनी सेवा प्रवान करने जी पुला चुका दिखे वहां उस कार्य भाई साहब भाई यशपाल सिंह जी रागी जिथे पासों पावन पवित्र कीर्ति सरण करिए जी बुलाओ फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

Phoenix Seva. कीर्तन प्रवान करनी हो या ब्लॉज का दिखिमा करनी और अगले कीर्तन सरण करिए सत्कार्य उपाय साहब सुरजीत सिंह जी रसीला उन्ना पास अगले कीर्तन सरण करिए दास लोकपति प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।